0: अहिले हाम्रो गर्नेमा 8 बजेको छ।
1: ए समय को साथ में जितू सुनचादी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संग जोड़ डिपार्टमेंट स्टोर्स को 5 घर अगाड़ी जैसी 15 तर्फ जाने बाटो में कुना को लाइन में
1: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: रेडियो आदि खोला 105.4 आपने ख्याल राख्नुस् है।

0: सुनत एक बजे
1: इस समय को साथ में जितू सुनचादी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़िए डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो में कुना को लाइन में
1: विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुस्।

आज कोई सुंदर व्यवसाय हमें मंगलवार व्यवसाय में छ मंगलवार व्यवसाय में रहे देवहर समक्ष सुमधुर खाल का भाका कार्यक्रम में हिस्सा दिने जमर्क में जुटी रहशेषकरी आज हम देवहर को रोजाई में रहे भाका कार्यक्रम में जोड़े अगाड़ी बढ़ना गई रहेका छौं। यहाँहरू हामीलाई 0363 44 2085 मा फोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आफूलाई मनपर्ने भाका रुझाइमा पार्न सक्नुहुनेछ। हामी दुबहरूकै रुझाइमा रहेका भाकालाई कार्यक्रममा जोड्दै अगाडि बढ्नेछौ भन्दै यति बेला हामी अर्को सुमधुर खालको भाका जोड्छौ। सोही भाकासँगै हामी पुनः हामी छोटो व्यापारिक विश्रामतर्फ लाग्नेछौं। विश्राम पछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। यहाँहरू पनि हामीसँगै रहनुहोला।

0: पहले हम लोग अर्णिमा पाँच बजे
1: इस समय को साथ में जितु सुनचादी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संगे चोड़ी को डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो में कुना को लाइन में
1: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुस् है।

एस आदि खोला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सेंचा।

0: सुनोस ना, आइले हम लोग आने में 8 बजे के छा
1: इस समय को साथ मा जितू सुनचादी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़िएको डिपार्टमेंट स्टोर्स को 5 घर अगाड़ी जैसी 15 तर्फ जाने बाटो मा उनाको लाइन मा
1: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री गर्ने ठाउँ
0: सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् है।